0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा

0: एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतूर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।
3: वंदन द्वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुनें भक्ति संगीत।

मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 212, 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनी गई श्रृंखला सिनी संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। श्रोताओ, आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे। सात बजे सुनाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमेरिकन दुबई की बातचीत का पहला भाग। दिन में 11 बजे विविधा में सुनी आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग का संपादित अंश। सहभाग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नरोत्तम बेन, ममता वर्मा। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। 2:30 पर सुनेगा सदाबहार नगमे। 3 बजे होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक पोस्टमैन का दूसरा भाग, के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद किया है पीएस कृष्णा स्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नई पुरानी। शाम 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा, आज महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा आपको सुनाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम साज और आवाज, रात 8 बजे हर नए कार्यक्रम में सुनेगा झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक, रात 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर सुनेगा आज के फनकार, और रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये विविध भारती है, आइए सुनें श्री रामचरित मानस का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्रीराम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधी न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ आए हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM band 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। ये जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज सुबह 7:40 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सुप्रभात। इससे पहले 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे, 7 हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। 8 सुनेगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध के भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे 8:30 से। 9 विविध भारती से सुनिएगा भारत की गूंज।

पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका पांचवा भाग आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर विविध भारती से। 9:25 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम आज के फनकार। 10 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से सुनिएगा नारी मंच कार्यक्रम। इसमें सुरक्षित रहे आहार खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष बातचीत सुनिएगा। 10:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम बाल सभा। 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आप एक बार फिर से सुन पाएंगे। 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:10 पर विविध भारती से कुछ बातें कुछ गीत। 2 बजे विविध भारती से राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे। 2:30 बजे गीत गुंजन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 3 बजे न्यू इंडिया समाचार। 3:10 से 5 बजे तक एक बार फिर आप आनंद लेंगे विविध भारती के प्रसारणों का।

छह बजे हिंदी समाचार होंगे। 6:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा सुनेगा। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। भक्ति संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:20। 6:30 घर आंगन कार्यक्रम सुनेगा, जिसमें स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय पर बातचीत होगी। 7 बजे कार्यक्रम होगा हमारी पसंद।

सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का 7वां भाग प्रसारित होगा 7:10 पर। 8 बजे सुनिएगा व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम। 8:45 पर हिंदी समाचार होंगे। 9 बजे विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे। 10 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित कार्यक्रम। 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और अंग्रेजी में समाचार होंगे।

कल सुबह की सभा का आरंभ होगा 5:55 पर। 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार विविध भारती से। 6:05 पर वंदनवार कार्यक्रम होगा। 6:45 पर कार्यक्रम रूपरेखा सुनिएगा संस्कृत समाचार। 6:55 पर 7 बजे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोकरंग। सुप्रभात कार्यक्रम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से ही प्रसारित होगा 7:40 पर। 8 बजे समाचार प्रभात होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे 8:30 से 10 बजे तक। 10 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से नमस्ते हिसार कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए। 11 बजे विविध भारती के प्रसारणों में रंग तरंग। 12 बजे यादों की महफिल आप सुन सकेंगे। 1 बजे विविध भारती की गीतमाला होगा। 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार। 1:10 पर एक बार फिर विविध भारती की गीतमाला सुनिएगा। 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे। 2:30 बजे सदाबहार नगमे फिल्मी गीत। 3 बजे विविध भारती आप आनंद ले सकेंगे रंगारंग प्रसारणों का।

5 बजे आकाशवाणी के हिसार केंद्र से कार्यक्रम होगा एक कलाकार, 6 बजे हिंदी समाचार कार्यक्रम रूपरेखा 6:05 पर, प्रादेशिक समाचार 6:10 पर होंगे, भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:20 पर, 6:30 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग, 7 बजे होगा कार्यक्रम खेती किसान ना सेती कार्यक्रम, 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का अगला भाग प्रसारित होगा, 7:45 पर हमारे गांव कार्यक्रम में सुनेगा संस्कृति से संबंधित कुछ बातें और लोकगीत, 8 बजे कार्यक्रम होगा महफिल, 8:30 बजे सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे, 9 बजे विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे, 10 बजे तक 10 बजे हेलो हिसार कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण किया जाएगा और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे सुनेगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
1: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन, वी टेक मी।
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा,
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से

0: खत भिजवाया और ईट जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
1: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
3: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की
1: आपके बेहद करीब
2: कार्यक्रम एक शख्सियत
1: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है, FM बैंड 102.3 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, उसके तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: अष्टः दिनाङ्कः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगतः सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीयपुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकीदलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों

0: के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज के कार्यक्रम में फिल्म मारा पीर सासरा का जिक्र और गीत संगीत की बात करेंगे। 1985 में बनी इस फिल्म ने सामाजिक रिश्तों, संस्कार और संस्कृति को खूब बढ़ावा दिया। हरियाणवी सिनेमा ने पिछले 50-60 साल से खूब उतार चढ़ाव देखे। खास हरियाणवी बोली का लहजा हरियाणवी फिल्म मारा पीर सासरा की अपनी पहचान बनी।

मारा पीर सासरा हरियाणवी फिल्म में देहात से जुड़े मुद्दे पर गौर फरमाया। सुदर्शन लाल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जाने माने कलाकार राजा बुंदेला, दलजीत कौर, राजू मान, अलका नुपुर, लहरी सिंह और ओपी हरियाणवी के साथ राजा मुराद ने खास भूमिका निभाई। रविंद्र जैन के मनमोहक संगीत ने मारा पीर सासरा फिल्म को नई ऊंचाई दी।

लगभग 60 साल पहला हरियाणवी फिल्मा की शुरुआत के बाद 1983 में बहू रानी, 1984 में चंद्रावल और 1985 में मारा पीर सासरा फिल्म के बाद तो हरियाणवी फिल्मा में नई जान आई। आज के दौर में पगड़ी सतरंगी और यशपाल शर्मा की फिल्म दादा लक्ष्मीचंद ने खूब नाम कमाया। मारा पीर सासरा फिल्म में आपसी सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का बढ़िया संदेश दिया।

हरियाणवी लोक संगीत की सौर लहरियां पुराने लोक वाद्य यंत्रों का मीठा संगीत मारा पीर सासरा फिल्म की पहचान रही। रविंद्र जैन के संगीत ने इस फिल्म के गीत संगीत में मिठास गोल का काम कराया। सो बाता की एक बात, मारा पीर सासरा फिल्म लोक संस्कृति और लोक संगीत को सहेजने और आगे बढ़ाने में सफल रही।

ये था भाइयों आज का कार्यक्रम हरियाणवी फिल्म मारा पीर सासरा की बात और गीत संगीत। इसी के साथ ही आज का लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे वन भैया ने राम राम।

0: देश के हर कोने से आती है ये आवाज। हेलो, आपके दिल की धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन? जी हाँ, हेलो हिसार, आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे कि तो नंबर है 01662297827। क्या कहा? किस वक्त करें फोन? रिकॉर्डिंग का समय है हर शुक्रवार दिन में 11 से 11:30 बजे और प्रसारण होगा हर शुक्रवार और रविवार शाम 5 बजे। रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप सुना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, उसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शनिवार और सोमवार रात 10 बजे। तो हर शुक्रवार रहिए तैयार अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें है आपके हेलो का इंतजार। हर सुबह एक मौका है
1: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
1: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
1: आकाशवाणी हिसार के साथ।
2: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
1: नया बेहतर है
2: क्योंकि तुम ही हो,
0: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज क्या है?
1: नया श्रेष्ठ है।
2: केसरिया तेरा,
0: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
1: नया उत्कृष्ट है,
2: तेरी गलियां गलियां,
0: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल था।
1: नया अनूठा है,
0: किंतु पुराना अनुपम।
1: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
0: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
1: हर बुधवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है FM बैंड 102.3 MHz पर। श्रोताओं सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी ऋतु कौशिक।

श्रोताओं, जब रात अपनी चुप्पी समेट लेती है और उजाले की पहली किरण दरवाजा खटखटाती है, तब सिर्फ सूरज नहीं उगता, उगते हैं नई उम्मीदें, नए संकल्प और एक नया मौका। इन्हीं ताजी किरणों के साथ आप सभी को हमारा स्नेह भरा सुप्रभात।

आज अगर बात करें मौसम की तो सुबह की ठंडी हवा से शुरुआत हुई है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप अपना रंग दिखाएगी, सूरज आसमान में तमतमाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी। तो आज का मौसम थोड़ा गर्म रहने की संभावना है, इसलिए अपना बचाव इस गर्म मौसम में जरूर रखें। और अब आज का सुविचार, जिंदगी में हालात नहीं हमारा नजरिया तय करता है कि सफर बोझ बनेगा या सीख। ये हमें सीखने की बात है।

श्रोताओं, श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमें सीख मिलती है जीवन की प्रेरणा की। तो आइए सच्चे मन के साथ करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। करहिं आहार साक फल कंदा, सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अर्थात वो साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और फूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतई परमारथ बादी। अर्थात हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। अर्थात जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। अर्थात ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस षट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे।

आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और सुप्रभात में अब बारी है एक प्रेरक कहानी की। एक बार दो साधु एक ही क्षेत्र में रहते थे। एक साधु एकांत में रहकर ध्यान करता था। वो कम बोलता था, गहराई से सांस

प्रार्थना करता और मानता था कि शांति भीतर से मिलती है। दूसरा साधु लोगों के बीच रहता, उनकी सेवा करता, भूखों को भोजन देता और दुखियों का सहारा बनता। उसका विश्वास था कि सेवा ही सच्ची पूजा है। लोग अक्सर दोनों की तुलना करते, कोई कहता ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है तो कोई कहता सेवा करने वाला महान है। एक वर्ष वहां भयंकर सूखा पड़ा। सेवा करने वाला साधु गांव वालों की मदद में लग गया, दूसरी ओर ध्यान करने वाला साधु मौन साधना में ही लीन रहा। कुछ लोगों को लगा कि वो किसी के काम नहीं आया, लेकिन कुछ ही समय बाद वर्षा हुई, नदी में पानी आया और गांव को राहत मिली। तब ध्यान करने वाले साधु ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा और कुछ भी नहीं किया। जब मन शुद्ध होता है तो प्रकृति स्वयं राह बना देती है। सेवा करने वाले साधु ने मुस्कुराकर कहा, और जब हाथ आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर स्वयं उनमें शक्ति भर देता है। तब लोगों को समझ आया, मार्ग अलग हो सकते हैं पर उद्देश्य एक ही होता है। सच्चाई, करुणा और निष्ठा, यही असली साधना है।

समाप्त करते हैं। याद रखिए, जीवन में आप जो भी रास्ता चुने, अगर उसमें सच्चाई और मानवता है तो वही सही रास्ता है। नई सुबह आपके जीवन में शांति, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी आपसे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: साहब कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया। वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष सहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और

0: सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुले सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश

0: मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झापसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संस्विदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज यूं चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं के बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।
1: नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत।

0: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहां तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो।

0: अच्छा
1: जरा सा
0: अरे वाह
1: जरा सा

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है, खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं। ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

राधे श्याम सीताराम, नफरत को दूर हटाओ और सबको गले

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, भोर की सुनहरी किरणों पर सवार विविध भारती की सुनहरियों पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम चित्रलोक, और ये रहा चित्रलोक कार्यक्रम का पहला गीत आपके रेडियो सेट पर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम।

निबंधन पायो संगीता अनविशा विनीत सिंह हर्षदीप कौर और शहबाब साबरी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे हिमेश रेशमिया का संगीत था। श्रोताओ आज जन्मने लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की जन्म जयंती है। अपने लंबे करियर में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, नाटक उपन्यास कहानियां सभी लिखी, 45 फिल्मों की लगभग पटकथा स्क्रीन प्ले भी लिखा। 7 जून 1914 को हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कॉलम भी लिखे जो भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भी है। ख्वाजा अहमद अब्बास को समानांतर सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा का अग्रदूत भी माना जाता है। फिल्म नीचा नगर जो 1946 में रिलीज हुई उसकी पटकथा भी उन्होंने लिखी, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। उन्होंने राज कपूर की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियां और पटकथाएं भी लिखी, जिनमें आवारा श्री 420, मेरा नाम जोकर, भाभी और हिना भी शामिल है। 1969 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म सात हिंदुस्तानी के माध्यम से उन्होंने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया। साहित्य और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 1 जून 1987 को ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा।

हिट स्टोरी फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार का लिखा, आवाज थी हर्षित सक्सेना की, तस्वीर थी हर्षित सक्सेना की। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक के कुछ आगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

भारत भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज हो।

गीत और संगीत था राशिद खान का। जावेद अली को आपने सुना फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बनी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए सुनते हैं पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का 5वां भाग।

0: 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर विजय सिंह आपके साथ, और हम एक गाना सुन लेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, जानकारी भरा कार्यक्रम,
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्रामों से और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे, और ग्रामवासी भी, और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुँच पाए, उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
2: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया, तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
3: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर, हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए, और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे, चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
2: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
3: मेरा सहयोग दिए।
2: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
3: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकसभा, जैसे हम लोग

0: छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से। अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है। उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए। पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केरड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया। इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए। और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है। और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का। उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन वर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण।

0: हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का। उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला बुजुर्गपुर से हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के वजह बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर सेट में काम किया था, जल ग्रहण समय

0: और डीजल की बचत भी होगी। इसी के साथ साथ बच्चों कुछ चीजें जो पुरानी होती हैं उनको अपनाना अच्छा होता है। जैसे अगर आप देखें तो आज भी आपके बड़े बुजुर्ग जो है वो साइकिल चलाना पसंद करते हैं। हालांकि घर में स्कूटर मोटरसाइकिल कार होती है, लेकिन अगर उनकी इच्छा होती है तो कहते हैं कि साइकिल ही ठीक है, क्योंकि साइकिल जहां एक और शारीरिक सेहत को बरकरार रखती है, वही देखा जाए तो धरा की सेहत को भी संभाले रखती है। क्योंकि जितने भी वाहन का हम प्रयोग करते हैं उससे प्रदूषण बढ़ता है, तो धरती की सेहत और खुद की सेहत भी संभली रहती है अगर आप साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या पैदल चलते हैं। और अब रुक करते हैं याशना की ओर। याशना कक्षा 10वीं से है, आइए सुनते हैं क्या कहती हैं।
1: मैं याशना कक्षा 10वीं से, इसी के चलते मैं पर्यावरण के प्रति बदलते विचारों का वर्णन करना चाहती हूँ। समय के साथ साथ इंसान की सोच में भी बहुत बदलाव आया है। पहले लोग पर्यावरण को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते थे, वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलते थे, वे प्रकृति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते थे। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। जैसे जैसे आधुनिकता और विकास बढ़ा, वैसे ही मनुष्य की सोच भी बदलने लगी। लोगों ने आराम और सुविधा के लिए पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रदूषण बढ़ाया और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया। उस समय हमें लगा कि यही प्रगति है, लेकिन अब फिर से एक नई सोच विकसित हो रही है। लोग समझने लगे हैं कि यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अब गो ग्रीन सेव अर्थ जैसी सोच तेजी से बढ़ रही है। यह सोच सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है। लोगों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। अब इसी बात को समझते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें इस अच्छी सोच को अपनाना चाहिए और पर्यावरण के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।
0: क्या बात है, तो बच्चों बजा दीजिए याचना के लिए ताली। बिल्कुल सही कहा याचना ने कि हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए बल्कि लगाए गए पेड़ों को संभालना भी चाहिए। बच्चों देखा ही जाता है कि वन महोत्सव हो या फिर हरियाली बचाने के जो प्रयास किए जाते हैं, खासतौर पर जब बरसात का मौसम आता है तो पेड़ तो सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन पेड़ों को लगाकर भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। और जो पेड़ लगा रहे हैं उन्हें पेड़ को संभालना होगा, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम अपने परिवारजनों को संभालते हैं। अगर हम धरती को अपना परिवार मान लेंगे तो फिर इसकी सेहत को के साथ हम किसी भी तरह का ना खिलवाड़ खुद करेंगे ना खिलवाड़ होने देंगे। और अब बाल सभा में सुनते हैं अक्षता और सुहानी को। आइए सुनते हैं कक्षा 7वीं की ये छात्राएं हमें क्या कहना चाह रही हैं।
2: नमस्कार, मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से पर्यावरण पर लोगों के बदलते विचारों के ऊपर कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी सखी सुहाना भी है।
3: नमस्ते, मैं सुहाना कक्षा 7वीं से।
2: पर्यावरण पर लोगों के विचारों में पिछले कुछ वर्षों में एक गहरा और सकारात्मक बदलाव आया है। अब लोग इसे सरकारी जिम्मेदारी न मानकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे हैं। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारण चेतना बढ़ी है, वो कैसे आइए इस वार्तालाप के दौरान जानते हैं।
3: नमस्ते अक्षिता।
2: अरे नमस्ते सुहाना।
3: अरे अक्षिता, क्या बात है, आजकल तुम्हें हर जगह प्लास्टिक की बोतल की जगह कैन लेकर घूमते देख रही हूँ।
2: हाँ सुहाना, सच कहूँ तो अब समझ में आ गया है कि हम धरती के साथ क्या कर रहे हैं। अब तो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का असर साफ साफ दिखने लगा है। इतनी गर्मी, असमय बारिश, डर लगने लगा है।
3: तुम सही कह रही हो, कुछ साल पहले तो हम लोग पर्यावरण के बारे में इतना नहीं सोचते थे। लगता था कि ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, पर अब तो सांस लेने में भी घुटन महसूस होती है।
2: बिल्कुल, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। पहले यूज एंड थ्रो का चलन था, अब लोग रीयूज और रिसाइकिल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यह एक सकारात्मक बदलाव है।
3: हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। अब मेरे घर वाले भी सब्जी लेने जाते समय घर से कपड़े का थैला लेके जाते हैं। प्लास्टिक के लिफाफे लगभग बंद हो रहे हैं।
2: अच्छा है, छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। अब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम हो।
3: मुझे लगता है कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को बचाना ही होगा।
2: बिल्कुल सही कहा। चलो इस बार वीकेंड पर हम दोनों मिलकर अपनी कॉलोनी के पार्क में पेड़ लगाते हैं।
3: जरूर, प्रकृति की शरण में जाओ, अनमोल पर्यावरण को बचाओ।
2: बिल्कुल सही, यही समय की मांग है।
3: क्या तुम मेरे साथ एक कविता गाओगी?
2: हाँ बिल्कुल।

0: दुनिया खुशहाली, आओ सब मिल करे विचार, प्रकृति पर ना हो कोई बार, कचरा कम और पेड़ लगाए, धरती को स्वर्ग बनाए, पर्यावरण का रखो मान, तभी बनेगा सुंदर जहान।
1: क्या बात है, तो बच्चों बजा दीजिए आखिरकार सुहाने की ताली। तो बच्चों बिल्कुल सही कहा अक्षिता ने कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और आइए अब सुनते हैं कक्षा आठवीं के गौरव, दिव्यांश और गर्वित की कविता।
2: पर्यावरण पर कविता।
3: हरी

0: मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को शुद्ध बनाएं, कचरा कूड़ा दूर भगाएं, पर्यावरण दिवस मनाएं।
1: तो बच्चों बजा दीजिए गौरव दिव्यांशुर गगन को निकालिए। बिल्कुल सही कहा कक्षा आठवीं के गौरव दिव्यांश और गर्वित ने कि पेड़ लगाने हैं और साथ ही साथ जो कूड़ा कचरा है उसका निष्पादन सही तरीके से करना है। निष्पादन मतलब कि गीले कूड़े और सूखे कूड़े का ध्यान रखना है कि किस तरह से उसको फेंका जाए कि वो धरती की सेहत को ना खराब करे, आसपास साफ सफाई बनी रहे। और इसी के साथ में आइए अब बाल सभा में रुख कर रहे हैं कार्तिक की ओर। कार्तिक कक्षा आठवीं से है और बता रहे हैं खुद छोटे से बच्चे हैं कि बाल सभा के सुनने वाले हमारे नन्हे मुन्हे बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। बच्चों ध्यान रखना है कि पर्यावरण दिवस केवल 5 जून एक दिन तक या कुछ दिनों तक पखवाड़े तक सीमित नहीं है। जब जब हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे धरती की सेहत जो है वो सलामत रह सके, पर्यावरण को हम मददगार मित्र के रूप में अपनी भूमिका अदा करके दिखा पाए तो वो हर दिन पर्यावरण दिवस होता। आइए सुनते हैं कार्तिक को।
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या बड़े लोग ही कर सकते हैं, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। बच्चे भी पर्यावरण को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छोटे छोटे काम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बच्चे अपने आसपास स्वच्छता रख सकते हैं। यदि हर बच्चा यह निश्चित कर ले कि वह सड़क, पार्क या स्कूल में कचरा नहीं फैलाएगा तो हमारा वातावरण काफी साफ रह सकता है। बच्चे दूसरों को भी सफाई रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे पानी और बिजली बचाने में भी मदद कर सकते हैं। कई बार लोग बिना जरूरत के पंखे, लाइट या नल खुले छोड़ देते हैं। यदि बच्चे इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो बहुत सारे संसाधनों की बचत हो सकती है। यदि बच्चा अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए और उसके देखभाल करे तो कुछ ही वर्षों में आसपास हरियाली हो जाएगी। सोचिए यदि एक स्कूल के सभी बच्चे हर साल एक एक पौधा लगाए तो हजारों पेड़ तैयार हो सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होगा और प्रकृति भी सुंदर बनेगी। बच्चे पेड़ पौधे की देखभाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बच्चा बगीचा लगाए, घर में एक छोटा पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना भी पर्यावरण की रक्षा का एक अच्छी तरीका है। जब बच्चे पेड़ और पौधे के करीब रहते हैं तो उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बच्चे पेड़ पौधों के नजदीक रहते हैं तो उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो बजा दीजिए कार्तिक के लिए तालियां।

और बच्चों, इससे पहले कि बाल सभा में हम सुने आपके दिल की और बातें, आइए सुनवा देते हैं आपको एक गीत।

0: इस गीत के बाद बाल सभा के इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं नवी कक्षा की गौरव वंशिका जिया दीप्ति। आइए सुनते हैं इनकी एक कविता।
1: मैं कक्षा नौवीं की छात्रा गौरव वंशिका।
2: मुस्कान मेरी पहचान, जिया मेरा नाम कक्षा नौवीं से।
3: मेरा नाम दीप्ति है, मैं कक्षा नौवीं की छात्रा हूँ।
2: आज हम आपके सामने कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई रखने जा रहे हैं जो हम सबके आसपास हर रोज घटित हो रही है। यह पंक्तियाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारी धरती की वो खामोश पुकार है जिसे हम हर रोज सुनकर भी अनसुना कर देते हैं।
1: जब पेड़ कटते हैं, हवा जहर बन जाती है, तब प्रकृति ही हमसे सवाल करती है। उन्हीं सवालों को शब्द देने और उनका समाधान देने की एक छोटी कोशिश प्रस्तुत है हमारी कविता धरती की पुकार।
2: नीला नीला गगन था जिसका, आज धुएं से भर गया। हरियाली का आंचल उसका धीरे धीरे झर गया। सरसर करती नदियां सूखी, जीवन जैसे थम गया। मानव की इस भूल से देखो सारा संतुलन बिगड़ गया। वह कहती, मैंने तुझको जीवन का उपहार दिया, अन्न जल और शुद्ध हवाओं का अमृत अपार दिया, फिर भी तूने लोभ में आकर मेरा रूप बिगाड़ दिया। अपने ही स्वार्थ के खातिर मुझको इतना मार दिया। मेरे आंचल को मत काटो, मुझ में ही तेरा घर है। मेरी गोद में पलकर ही तो जीवन तेरा सुंदर है। अगर मैं ही रूठ गई तो सोना सारा संसार होगा। तेरे सपनों का हर एक रंग पल में ही बेकार होगा। जागो मानव, अभी समय है, अपनी भूल सुधारो तुम। पेड़ लगाकर जल बचाकर प्रकृति का मान सवारो तुम। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर बड़ा बदलाव ला सकते हो। धरती माँ के सच्चे बेटे बन उसका कर्ज चुका सकते हो। आओ मिलकर कसम ये खाएं, हरियाली फिर लाएंगे। नदियों को फिर स्वच्छ बनाकर जीवन गीत सुनाएंगे। धरती माँ की रक्षा करके कर्तव्य अपना निभाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम सुंदर भविष्य दे जाएंगे। ये सच है कड़वा, मगर मानना पड़ेगा। अपने ही घर को हमें बचाना पड़ेगा।
0: तो बच्चों बजा दीजिए गौरव वंशिका जिया दीप्ति के लिए जोरदार तालियां। और देखिए, जैसा कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पर्यावरण दिवस केवल एक दिन तक सीमित नहीं है, और आज की बाल सभा में हमारे साथ पहुंची हैं आप सबकी सुषमा जी। सुषमा जी, पर्यावरण दिवस से जुड़ा अपना संदेश क्या किस तरीके से देना चाहती हैं, आइए सुनते हैं।
4: नमस्कार, मैं सुषमा। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों के मिल से बना है, परि प्लस आवरण, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ। अगर हमारी पुराने समय की बात करते हैं तो हमारी धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, पर अब वो हरियाली केवल एक सपना मात्र रह गई है। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने पेड़ों की कटाई करना, नदियों को प्रदूषित करना, ये सब आरंभ कर दिया है। अब अगर हम हमारी नदियों की बात करते हैं तो भारत में नदियों को माता के रूप में माना जाता है, पर यमुना नदी को आज के समय में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी का दर्जा मिल गया, जिसका कारण हम, आप और ये सारा संसार है। तो हमें अपने प्रदूषण को काबू में रखकर अपनी व्यवस्था सही तरीके से करके जो पर्यावरण है उसे फिर से अपना हरियाली भरा बनाना चाहिए। मैं कुछ लाइन्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। पर्यावरण की करो सुरक्षा, सबको देनी है ये शिक्षा। निश्चित तिथि को है मनाते, बस हम यहाँ तक क्यों सीमित रह जाते। प्रत्येक व्यक्ति की हो यह मंशा, मिलकर हर दिन करे पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण का रखे ध्यान, क्योंकि इसमें ही है हम सबके प्राण। प्राण वायु का स्तर बढ़ाएं, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर चारों ओर हरियाली फैलाकर धरती का हम रूप सवारे, नई दुल्हन सा इसे सजाए। हरियाली का आंचल उड़ाकर इसकी खूबसूरती बढ़ाए। और अंत में मैं केवल एक संकल्प के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पेड़ पौधे लगाएंगे हम, पेड़ पौधे लगाएंगे हम, पृथ्वी को बचाएंगे हम। धन्यवाद।
0: बच्चों बजा दीजिए सुषमा जी के लिए। और इसी के साथ देखिए ना, आज की बाल सभा का समय अब समाप्त हो चुका है। आप सब बच्चों का करेंगे हम धन्यवाद, आपका, आपकी तालियों के साथ।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा FM एंड 102.3 MHz पर ही आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब एक बार फिर आनंद ले सकते हैं आप विविध भारती के प्रसारणों का।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओ, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पत्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष जाधव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमई शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुंचता है पानी, उनसे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित है। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान

0: भूमिचंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी है। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, छमशेरा, महारानी, मां जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की है। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मुहे, बिटिया न कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि है। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना, सातारकर, कबीरांची बीन, माए अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम, नरोत्तम बेल। विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली है। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांव की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं। तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करेंगे। अपनी माटी की सेवा खातिर यहाँ बराबर गई है। आज मुझे विविध भारती ने याद किया है अपनी लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गहने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यह भोग में सरस्वती कहने लगा तब सुनाऊंगी आप सबके
1: सरस्वती मैया की जय।
2: हाँ।

0: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ भूप भारती की।
1: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
0: देखिए भूप भारती आपका 90 वर्ष,
1: तो उस पर कुछ गा रही
0: हूँ। हाँ सुनाई जाती हूँ।

0: बड़ा सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है।
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है, तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही है, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्द में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरंगे बिया कर घर के लड़के। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर है। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था, हमारी माँ ही कहती थी हम ही शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कास्ट के घर में। घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई नहीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, बरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखे तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी है और संगीत के बहुत जानकार है, संगीतकार भी है, तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं। जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
2: सर्वांना नमस्कार। भाषा कहते ना, जरी भाषा कहली नाही तरी भावना कळते, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
1: बिलकुल
2: है क्या नाही, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैमा

बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति

0: विभाराने देंगी. खास तौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया. झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए. जोरदार तालियां एक बार हो जाए.
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला से मैथिली भाषा है सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले. हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी. हमारे करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है तो बुझाई है जे आकाशवाणी हमरा लेल नई हर माने मायका अच्छी. अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है. एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शमशाई. अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है. इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं.
0: क्या बात है.
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि में बैठे हुए थे. भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए. उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई. तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा. तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब. तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहौर लौका मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो. तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली. तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा. ममता आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना. झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है. भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म के बोलती उनकी आराधना की जाती है.

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिल जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभा जी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में लेख लिखे तो मुझे आवाज देना और मैं वहां से आऊंगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतजार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपनी मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज दी

जट्टा को आवाज सुनाई थी, उसने वहीं से कहा, एलियो गे जट्टिन एलियो, गेलियो गे जट्टिन एलियो, आयब गेलियो गे जट्टिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जट्टिन ही मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने कावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछे, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक है। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम करे सभी जनन को, नरम देहर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लम्पेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ये है बम्बुलिया और लम्पेरा। लम्पेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छी जानकारी लोगों से के बारे में ली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग, और एक बंदा कहीं बहुत दूर है, बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है

जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है, तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पर कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा, तो ऐसा रुक जाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है। उसमें देवी महिमा, खासकर नर्मदा जी, इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न से आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह क्या बात है। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया, और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर, आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बर्फ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहां का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है, लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है, भले ही आपको समझने में कठिनाई हो लेकिन मीठी आवाज में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं। तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ का जीवन काफी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं, महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
2: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती है बहुत निडर महिलाएं होती है, शक्तिशाली होती है, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती है। नमस्कार, प्रणाम, पहलाद, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ उस गाने में ही

0: एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है। एक लड़की के दुख और उसकी पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनाइए।

वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोह लियो रे, इस गाने पर सारे दर्शक खड़े होकर नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब इसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया को कन्हैया, पनवा के सबरस ले लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया, पनवा के सबरस ले लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया, गंगा मुसाफिर बिना मोहली हो रे, पनवनिया को कन्हैया, उड़ उड़ बैठी बजदिया को कन्हैया, उड़ उड़ बैठी बजदिया को कन्हैया, उड़नी के सबरस ले लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया, उड़नी के सबरस ले लियो रे, पिंजरे वाली मुनिया।
0: थैंक यू जयंत भारती,
3: धन्यवाद।
0: वो सरगम जिन्होंने बजाया, मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
3: शैली जी, एक कमाल की बात ये है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
4: रंगीत भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए रंगीत भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का रंगीत भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवाजी शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरवेली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बिल्दार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी, सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांगले, और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश

मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय

0: सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है आंधी, गुलजार के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहीं आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुना रहे हैं सुहाना सफर इस फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर है। मंजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग गए नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई सितारे बन गए।

कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

है जाती है जिसमें दुनिया सारी चांदनी रातों में एक दीपक होता है।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आरजी बर्मन ने संगीतबद्ध किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है

है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

प्रिय श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यास से पढ़िएगा। प्यास से पढ़ा ना आपने? मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत में आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज की इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफर शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma.
1: सीबीआई ने आज हरियाणा सरकार के बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में रखी 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकुला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। सीबीआई ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। सीबीआई अधिकारियों के अनुसार चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और आरोप है कि सरकारी अधिकारियों को इसके लिए अनुचित लाभ मिले हैं। नोएडा स्थित एक कंपनी मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में हेराफेरी की राशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी

0: ब्यूरो से एक मामला हाथ में लेने और मूल रूप से आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज किए दो मामलों के बाद जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद सीबीआई पहले ही पंचकुला की सीबीआई अदालत के समक्ष दो विभागों हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों की मामले में भूमिका का विवरण देते हुए प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोप पत्र में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक के साथ जमा किए गए सरकारी धन की धोखाधड़ी के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तीनों मामलों की जांच सक्रिय रूप से जारी है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मार्च को आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अंबाला के जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि परिणामों में जिला अंबाला ने पूरे हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
1: 11,056 लोगों ने परीक्षा दी थी 15 मार्च के दिन और उनका अभी परिणाम आया है और 10,991 परीक्षार्थी सफल रहे हैं, यानी हमारा जो परीक्षा परिणाम है 99.41% रहा है, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ इस बार उल्लास लर्नर्स का वो भी सबसे ज्यादा हुआ, इसलिए जो लोग परीक्षा के अंदर बैठे वो भी हमारे सबसे ज्यादा रहे और परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले लोग भी जो है वो अंबाला में सर्वाधिक रहे।
0: उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया,
1: जो लोग कभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय नहीं जा पाए, 15 साल से ऊपर की उम्र के वो लोग 80 साल के भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों का पहले हम सर्वे करते हैं, उसके बाद उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, उसके बाद उनकी परीक्षा ली जाती है भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, परीक्षा परिणाम आता है, उसके बाद तीसरी कक्षा तक की शिक्षा का उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है।
0: पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में सम्पन्न हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, खेल विभाग पलवल के उप निदेशक राम मेहर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: अभी आप हिंदी प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर आनंद लीजिए विविध भारती के प्रसारणों का।
3: गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनाने वाले हैं, उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख दीजिए। और इस फिल्म में एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को, बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार की तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी। बिल्कुल सही, जो कब आएगा, कितना इंतजार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुनीला सफर का कार्यक्रम हम सफर बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज भी नहीं रह गई। वो रह गुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभ

एक चरण होता है जहाँ प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित होते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है। जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन की सबसे गहरी और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथी साथियों की आवाजों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

आशीष श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा की।

साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी है। हाँ, और इसका जवाब दिया गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है। क्या बात है, जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

जहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं। ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी के पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाई थी, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को, चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री है, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल हैं हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यास से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है

स्त्री ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती है और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही है, जी हाँ वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बढ़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनाया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हां, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नजर, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है?

ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझी से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए अब कार्यक्रम

0: हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?
1: आपकी सजन सा

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा, आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके

चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है।

अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: खाया।
1: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
2: आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भरता।

0: जलाऊं,
1: अच्छा
0: जरा सा चावल लाऊं,
1: अरे वाह
0: जरा सा दूध मिलाऊं,
1: खीर खीर खिलाओगे, शक्कर ना मिलाओगे,
0: अरे तेरी खीर

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश,

0: स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही।

पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही।

0: अजनबी।
1: वही आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु मूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब

0: 300 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। सहे लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत पर किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुम तो।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और ये अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में जीएल रावल ने इस गीत को लिखा। सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

ये तन्हाई कालम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई कालम और इस पर

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो

0: ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलमध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया था। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और कई अन्य भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 15वें ओवर में 2 विकेट खोए और 49 रन बनाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग इज अंडर वे इन न्यू दिल्ली। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono are co-chairing the meeting. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
2: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years we've made good progress in our bilateral relations. Today I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
1: Indonesian Foreign Minister Sugiono also said this is an important meeting to allow both the countries to review the progress of cooperation since the last Joint Commission meeting held in 2022.
3: I think it is an important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held 2022 to address outstanding subjects to our common interest and follow up the result of the leaders' meeting during President Prabowo's visit to India, and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes.
1: Union Home Minister Amit Shah has called for a close watch on financial and property transactions along international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern states. The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia, and Canada. Today is the last day to submit applications for verification of

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल।

0: है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बीबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी।

लीजिए, अब मनचाही गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। मजनू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए जिराफिन के इस गीत के साथ ही मनचाही गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाही गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों की, अपनी मनचाही गीतों के पत्र हमें लिखती रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये का नाम राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं। आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
1: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। लो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
1: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
1: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूं।
1: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जाबख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
1: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो क्या करना है?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
1: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद।
1: हाँ जरूर जरूर। और लछवाले और जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
2: जी बंधु।
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल मन बहार। सत श्री अकाल।
0: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
1: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
0: सौंपो जी सौंपो।
1: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
0: साड़ी मदद?
1: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
0: जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म, मैं उन्हीं जान की तैयारी करता हूँ।
1: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
0: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के माने ही रखूंगा।
1: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
0: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
3: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
4: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
3: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
4: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्जी को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
3: उफ दादी जान,
4: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह तखल अंदाजी और हमारी तोहीन होती रहती है।
3: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
4: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
3: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
4: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
3: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
4: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
3: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
4: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनिष्क की तरह।
3: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
4: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
3: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बगदाद कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
2: जो हुक्म आ दीजा। आलम बड़ा, गुलाम कादिर हाजिर है।
3: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
5: हुजूर, हुजूर, रहम।
3: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की कोड़ों से खाल उधेड़।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीर उल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहनशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मन बिहारी सिंह का ही सहारा है।

मंजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा, क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। गोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात के तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मुहरें अच्छी तरह पहचानता, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियां शमशेर खान, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक तो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेहयाबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह। अब किसी को भी मैं बच्चों के

हथरंगों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जा बना, हरम में जा चुके हैं।
1: मियां शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहां पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो, मैं जाता हूं। अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताखी माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अली जान, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखिए क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलम पनाह, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है। जहां पनाह के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ तका, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए, ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को देते हैं।
1: जी, बहुत अच्छा।
2: जनाब ने कैसे याद किया? कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी। जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहा है। गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
3: क्या कहा?
2: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में इतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो? इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
3: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
2: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार वक्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आ, आ,

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासक माल कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की
0: है। देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूँ हुजूर, अभी सब देता हूँ।
0: ला

0: से प्रलयी कैसे हो सकता है? ये राजलाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे?
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ नाचो।
0: नहीं।
1: बोला इनके कोरे लगा।

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आज पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की?

0: 20 इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है सरदार इंगले।
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को न जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना तले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें

नई जिंदगी बख्शी है। हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। तेरे के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा। खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत में भेजे हैं।
0: इंग्लिश, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होठ हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवा दें।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी, इसी वक्त।
2: नहीं,
1: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार, उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले जिसे इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या ही नाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाएगा ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम

0: तो कभी था।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विवेक भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विवेक भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने उस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती।

निकाल के न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या

0: 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसा मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा, जब तक मैं घर जाऊंगा हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए। बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है। बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन। उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूं। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
0: ठीक है।
1: तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
0: जी।
1: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइन्स। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब व्हाटएवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
0: जी।
1: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि

0: मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे। लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुई। ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छे
0: की बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर का कार उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इन्विटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां हाँ। गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए।
1: जी,
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना शुरू किया हाँ। कि ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है। और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज को सुनकर के सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये लिखा किसने है
1: जी।
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: जी।
1: जी,
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हमने, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे, तब मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा,
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी, जी।
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा, पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया।

0: वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है। अरे ये तो इंदु भी गाती थी,
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली। तो
1: जी जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा इसी गीत
0: इसी
1: को
0: गीत
1: आप
0: को
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूं, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूं, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल
0: जी
1: बढ़ाया, और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है।
1: जी
0: मेरे वतन के लोगों की जो भी
1: लॉयल्टी है।
0: रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी
1: लोगों,
0: जरूर
1: जरा आंख
0: जरूर।
1: में भर लो पानी।

0: देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन देशप्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी,
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के, वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे।
0: जी,
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास।
0: हाँ, हाँ,
1: और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी,
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे, सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी,
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी,
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनके गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं का,
1: इतनी भाषाओं के हमारे वहां अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा
1: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती
0: होती।
1: बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे अंग्रेजी में आएंगे
0: हाँ
1: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था।
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: एक नहीं दो तीन रेडियो थे क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
0: अच्छा,
1: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
0: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था। हाँ, और हर कण कण में वो
1: ये जो जागरूकता थी ना वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार

0: चार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, मेहंदी कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये
0: जी,
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

Thank you.

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम अभी
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था।
1: हाँ,
0: कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लह लही विमल वातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम
1: वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा,
0: ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहीं तो यही गीत
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंदेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति
1: मिली,
0: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना
1: मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
1: हर एक लाइन सुनिए आप
0: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आपको गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भी मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपने खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियन चाहे तो बदल दे, मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनूं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से। तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से कार्यक्रम FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हेलो हिसार।
1: हेलो हिसार।
2: हेलो हिसार। हिसार।

0: दोस्तों, आपका स्वागत है आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं आनंद लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम हेलो हिसार का दूसरा भाग। आइए देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। हेलो हिसार।
1: राधेश्याम कटारिया, श्री कर्णपुर जिला, श्री गंगानगर दादरपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: राधेश्याम जी, मैडम कहने की आदत इतनी पड़ गई है कि आप मुझे मैडम कह गए हैं।
1: मैडम मैडम आती है ना, इसलिए वो मैडम निकले मुँह से।
0: जी हाँ, इसलिए हमने इस बार सर डाल दिए बीच।
1: आनंद जी बोल रहे ना?
0: हाँ जी, आनंद बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, मैं कर्णपुर से राधेश्याम बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या सुनेंगे आज?
1: आज एक गाना सुनना चाहता हूँ सर मैं, तू चोर मैं सिपाही का गीत है। जो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर।

0: हेलो हिसार,
1: गांव बरुआ से विनोद निंदेवाड़ जी।
0: कैसे हैं विनोद जी?
1: अच्छे सर जी, बहुत दिनों बाद आए जी।
0: बहुत
1: और
0: शुक्रिया, आपने मुझे पहचान लिया।
1: जी
0: तो
1: आकाशवाणी परिवार सब मौज में जी।
0: जी, आकाशवाणी परिवार सब मौज में है, बहुत ही बढ़िया है सब लोग। आप बताइए, कैसे हैं आप और
1: अच्छे
0: आपके गांव के लोग और आपके गांव का पर्यावरण? क्या
1: जी, आजकल
0: कर रहे हैं आजकल?
1: जी खेती बाड़ी करते हैं जी, खेतों
0: क्या बो रखा है खेतों में?
1: में नरमा और बाजरी जी,
0: तो
1: और
0: बता।
1: जी घर के वास्ते सब्जी हो रखी जी, बिना
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बत
1: खाद खाद सतरे जी।
0: बिना खाद स्प्रे की।
1: हाँ जी
0: तो ये जो एक मिथ है, सब लोग सोचते हैं कि जो किसान है वो अपने लिए तो बिना खाद और बिना केमिकल की सब्जियां बनाता है और बाकी बेचने के लिए उसमें सब कुछ डालता है। इसमें कुछ सच्चाई है या झूठ है ये सब?
1: ये जी सच्चाई है जी, उसमें जी खूब आमदनी चाहिए जी, वो दवाई बहुत दो दिन टेकता है जी।
0: तो ऐसा क्यों करते हैं
1: ये जी धन के लालच में जी।
0: आप?
1: ये बात तो
0: इतनी
1: ये भी बिल्कुल
0: साफ
1: जी।
0: गोई, इतनी ईमानदारी, ईश्वर
1: हाँ
0: सबको
1: जी
0: बख्शे। बहुत बढ़िया। तो बताइए विनोद जी, क्या सुनाऊं आपको?
1: हाँ जी, आज ये खुवा दिए जी, मुझे जीने नहीं देती याद तेरी।
0: कौन सी फिल्म का है ये?
1: ये फिल्म तो कम देखते हैं जी, वैसे ये रेडियो सुनते हैं जी।
0: नहीं, ये गाना कौन सी फिल्म का है?
1: फिल्म का पता नहीं है जी, कौन सी है जी, फिल्म देखते ही नहीं है जी।
0: अच्छा, ठीक है।
1: हम जी रेडियो सुबह चला देते हैं 6 बजे और रात को 11 बजे समाचार सुनेंगे, तो ही सुना जी।
0: ठीक है, लीजिए, सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हिसार,
1: मैं गांव पनियारसर से विनोद टेलर बोल रहा जी।
0: विनोद टेलर?
1: हाँ जी।
0: तो ये नाम आपका पूरा विनोद टेलर ही है या काम करते हैं आप टेलरिंग का?
1: टेलर है जी।
0: नहीं नहीं नाम विनोद टेलर है या नाम विनोद है, काम टेलरिंग का है?
1: बोलो है जी, मेरा नाम भी ये है, टेलर भी है जी।
0: नहीं, नहीं, नाम तो विनोद ही रखा हुआ ना माँ बाप ने।
1: हाँ विनोद ही रखे जी, तो विनोद टेलर ना विनोद बोलेगा टेलर कह दे।
0: तो नाम विनोद बताया कीजिए ना, विनोद टेलर तो आपका प्रोफेशन हो गया साथ। स्वागत है आपका।

0: बताइए, ये तो पता लग गया हमें कि आप टेलरिंग करते हैं, है ना?
1: हाँ जी,
0: तो क्या सिल रहे हैं आजकल?
1: बस कुर्ते पजामे। और क्या सिल रहे हैं?
0: अच्छा, कुर्ते पजामे पूरे साल चलते हैं, गर्मियों सर्दियों में?
1: हाँ, गर्मियाँ सर्दियों दोनों चला है जी।
0: तो आजकल वैसे कम नहीं हो गया कुर्ते पजामे, लोग कम नहीं पहनते हैं, या ऐसा हमें लगता है सिर्फ शहरों में रहने वालों को?
1: ना, शहरों वालों को लगता है ज्यादा पहने हुए गमों में। हाँ
0: अच्छा, ऐसी बात है।
1: जी,
0: चलिए बहुत बढ़िया, ईश्वर आपका काम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ाए। बताइए क्या सुनेंगे आज आप आकाशवाणी हिसार पर?
1: फिल्म इंसानियत का सुनाइए जी, साथी तेरे प्यार में पूजा है, वो सुनाइए जी।
0: सुनवा
1: एक
0: रहे
1: मेरा मित्र
0: हैं,
1: जी संदीप कनेक्टर गोरची से,
0: लीजिए सुनेगा
1: बहुत बढ़िया
0: आपके
1: सुना।
0: और आपके मित्र के लिए ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सतारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं तुकाराम जाधव जी?
1: बहुत ठीक है, बहुत कुशल है, कुशल मंगल है, हमारा घर परिवार सब कुशल मंगल है, सब ठीक है।
0: अरे कुशल मंगल बनाए रखे। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं आप
1: जी?
0: हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल हरियाणा में, वहाँ कैसा मौसम है?
1: हमारे घर तापमान बहुत 39, 40, 42 ऐसा रहता है।
0: तो अभी वहाँ पर मॉनसून पहुँचा या नहीं पहुँचा?
1: नहीं, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कड़ी धूप है
0: कड़ी धूप है
1: जी।
0: बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म आराधना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कुछ मित्र का नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ सर जी।
0: लीजिए लीजिएगा।
1: हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। हमारे मित्र गौतम राय बड़ी जी, लोकेंद्र वर्मा जी, सुनील दास जी, दिलीप पहुजा जी, धीरज भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, गंगाधर सावनकर जी, पीएसआई राव शेळके जी, गौतम कोकाटे जी, विजय पाटिल चारुकर जी, धनंजय अक्षे जी, उदय काळे जी, रमेश जाधव जी, हम सभी की सुनना चाहते हैं सर जी।
0: आपके लिए और आपके सभी मित्रों के लिए फिल्म आराधना का ये गाना।

0: हेलो हिसार।
1: नमस्ते सर, मैं गांव मथाणी से महावीर बोल रहा था। मेरी किन से बात हो रही है?
0: आपकी बात आकाशवाणी हिसार से आनंद से हो रही है।
1: ओहो, आज तो आनंद मंगल ही होगा, आज तो आनंद जी से बात होगी। आपने वो पहले प्रोग्राम नमस्ते हिसार पेश किया था, वो भी सुन रहा था मैं।
0: शुक्रिया आपका। कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम आकाशवाणी हिसार के
1: एक नंबर टॉप के,
0: ये?
1: बहुत अच्छे लग रहे हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया।
1: सुबह वो आता है ना, वो 7:40 पर, उस समय से लेकर अभी तक फोन पर सुन ही रहा हूँ आपके प्रोग्राम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आपकी पसंद का आज हेलो हिसार में?
1: आज का गीत है आनंद जी, ढूंढता हूँ,
0: फिल्म बता पाएंगे?
1: फिल्म का नाम नहीं ध्यान सर।
0: ठीक है महावीर जी, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: थैंक यू सर, मैनी मैनी थैंक्स। बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हुई, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई आपसे बातचीत करने की।
0: बहुत शुक्रिया आपका। सुनिएगा।
1: आपके बहुत से प्रोग्राम सुनता हूँ, जिन भी प्रोग्रामों में आप आते हो वो सारे सुनता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया
1: थैंक
0: आपका।
1: यू।

0: हेलो सर।
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है भैया, अच्छा है
0: जी। बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: आज हमें सिलसिला से सुनवा देंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: ठीक है, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला का ये गाना।

0: क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से। सर
1: संतोष कुमार जी, क्या करते हैं आप?
0: वार्ताकार हूँ आकाशवाणी स्टूडियो शहडोल में और साथ में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूँ सर।
1: क्या बात है, आप तो हमारे ही परिवार के हैं।
0: बिल्कुल सर, बड़ी ही सहजता और सरलता का प्रभाव लाता है आकाशवाणी हिसार, और ऐसे कार्यक्रमों को जब प्रेजेंटर प्रस्तुत करता है तो उसकी शैली लोकप्रियता और भी निर्धारित समय पर बढ़ जाती है सर।
1: क्या पसंद है आपको आकाशवाणी हिसार में?
0: आकाशवाणी हिसार के यूँ तो सारे ही प्रोग्राम पसंद आते हैं, खास करके जो ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम होते हैं, साथ में जो आप वार्ताएं प्रस्तुत करवाते हैं श्रोताओं से खास करके, और ये सारे ही कार्यक्रम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं सर।
1: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आज क्या सुनेंगे?
0: आज आप सुनवा दीजिएगा सर, गाने बहुत सारे अच्छे अच्छे होते हैं सर। एक मूवी है सर, मूवी का नाम है जानी दुश्मन नई
1: जी
0: वाली,
1: जी
0: और इस फिल्म का गाना है सर आजा।
1: ठीक है संतोष जी, आपकी पसंद पर फिल्म जानी दुश्मन का ये गाना सुनिएगा।

0: हेलो हिसार।
1: सबसे पहले सर आपको प्यारे प्यारे सभी सुनने वाले श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा एक बार फिर से नमस्कार। सर
0: सर नाम बताइएगा। नमस्कार तो ले लिया मैंने। आप
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से। ये
0: रामपुर कहाँ पड़ता है?
1: सर रामपुर ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के पास बरेली के नजदीक में पड़ता है
0: क्या करते हैं मस्जिद आप?
1: जी। सर मैं हैंडवर्क जरी का काम करता हूँ
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बारीक काम करते हैं आप।
1: जी। सूदे पर कढ़ाई का काम रहता है सर, मोती सितारे कट जाना लगाना रेशम लगाना।
0: बताइए आकाशवाणी हिसार से आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर मैं गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम रहेगा मसूर, गोविंदा वाली है और इसमें गीत के बोले सीने पर रखकर सर को तेरे सो गए थे हम, थे कितने करीब तेरे हो गए थे हम। और सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं आपसे पहली बार जुड़ा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है, और सर मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा।
0: मेरा नाम आनंद है।
1: काफी अच्छा है आपका प्रूफ पेश करने का अंदाज है सर, काफी अच्छा लगता है।
0: सुनिएगा आपकी पसंद पर ये गाना।

0: तो ये था कार्यक्रम हेलो हिसार। अब अपने दोस्त आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो हिसार।
2: हेलो हिसार।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इन समाचारों को रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक

मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत की पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर

0: व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले चार दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार जिनका रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले हमारे केंद्र से आज शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर के बाद 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 6:20 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन जिसका विषय रहेगा स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मधु शर्मा। साय 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम महारी पसंद और 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00 और 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 से रात्रि 10:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण और रात्रि 10:00 सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम ई फरमाइश। रात्रि 11:00 राष्ट्रीय हिंदी समाचार और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे आज रात्रि 11:05 पर। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर। कार्यक्रम नमस्ते हिसार आप सुन सकेंगे प्रातः 10:00। कल 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार भक्ति संगीत 6:20 पर और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 6:30 पर। कल 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना सेती और 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम महारे गांव का समय रहेगा 7:45 पर। कल रात्रि 8:00 गजलें और कल रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हेलो हिसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधियों के दुरुपयोग व हेराफेरी के मामले के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में LPG वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर उपलब्ध। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुरुक्षेत्र में लोगों से आवाजाही के लिए पर्यावरण अनुकूल साधनों का प्रयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। आज हांसी और हिसार में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सभी से योग अभ्यास करने की अपील की और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और नगर निगम चंडीगढ़ और क्रेस्ट चंडीगढ़ की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखे 661 करोड़ रुपए की सरकारी निधियों के दुरुपयोग एवं हेराफेरी मामले की चल रही जांच के संबंध में चंडीगढ़, पंचकूला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की। CBI ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री जब्त की। CBI अधिकारियों के अनुसार 6 परिसरों में छापेमारी की गई, जिसमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ लोक सेवकों और एक निजी कंपनी और इसके निदेशक के आवासीय परिसर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि खाते खोलने, धन के हस्तांतरण और निधि की हेराफेरी में सरकारी अधिकारियों की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत थी और सरकारी अधिकारियों को इसके लिए कथित अनुचित लाभ मिले। नोएडा स्थित एक कंपनी के खाते में हेराफेरी की राशि भेजी गई, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। CBI ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद पंचकूला की CBI अदालत के समक्ष प्रथम आरोप पत्र दायर कर चुकी है और जल्द ही अतिरिक्त आरोप पत्र दायर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू LPG उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कुरुक्षेत्र में ईंधन बचाओ कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में गुरुकुल पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, भूमिगत जल बचाने और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती की ओर लौटना समय की आवश्यकता है।
2: इस समय हमारी धरती बंजर हो, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है। किसान इतना यूरिया, DAP, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसानों से आग्रह करेंगे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के, पर्यावरण को बचाने

0: में खेती तो प्राकृतिक खेती की ओर लौटे, गौ आधारित खेती की ओर लौटे, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके।
1: उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर पर तेल संकट गहरा रहा है और भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर तेल आयात करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप सभी नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाने से एक और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा तो दूसरी ओर इससे जुड़े जरूरतमंद परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से ई रिक्शा और अन्य पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हांसी में विशेष योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि योग अभ्यास किया। योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए

0: तुमने थोड़ा उस पर चलने का साहस ये रखने की जरूरत। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि ये योग का जो अभ्यास चल रहा है इस अभ्यास में सब लोग शामिल हो।
1: हरियाणा के आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आज हिसार स्थित टाउन पार्क में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञों द्वारा योग के शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक लाभों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने सभी को योग के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शरीर स्वस्थ नहीं तो किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज कुछ मायने नहीं रखती, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। श्री महिपाल ढांडा ने आह्वान किया कि योग अभ्यास में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। पलवल में फिट इंडिया एवं फिट हरियाणा अभियान को लेकर आज साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साइकिल रैली हुड्डा सेक्टर 2 पलवल से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में संपन्न हुई। रैली के दौरान श्री गौरव गौतम ने लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा एक कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया को लेकर चल रहा है संडे ऑन साइकिल, उसको लेकर हमारे युवा साथियों के साथ आज हमने साइकिल यात्रा की है। और ये साइकिल यात्रा हमारे भारत को स्वस्थ रखने के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए कि वो साइकिलिंग करें, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यायाम करें, जिससे वो स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना कर सकता है। और स्वस्थ रहोगे तो सब काम कर पाओगे। अपने जीवन में एक घंटा जरूर चाहे साइकिलिंग करें चाहे व्यायाम करें।
1: इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। जींद के नागरिक अस्पताल के प्रांगण में आज सामाजिक संस्था हेल्प ए मिशन ही एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 68 लोगों ने रक्तदान कर इस महादान में अपना सहयोग दिया। संस्था के पदाधिकारी रजनीश ने बताया कि नागरिक अस्पताल से रक्त की कमी होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया।
3: और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम गर्मी का मौसम है और गर्मी अत्यधिक होने के कारण शहर में ब्लड कैंप बहुत कम लग रहे थे। और सोमवार को हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से यहाँ से फोन आया था कि यहाँ पर ब्लड की काफी कमी हो गई है, कृपया आप ब्लड कैंप लगाइए। तो उसी कड़ी में हमने रविवार के दिन यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया है। आज हमारा यहाँ पर 60 से 70 यूनिट का टारगेट रखा गया है, तो अभी तक लगभग 40 के करीब यूनिट यहाँ हो गई है और उम्मीद है कि इस तरह से यूनिट हो जाएगी।
1: हरियाणा विधानसभा की मेजबानी कल से 10 जून तक भारतीय क्षेत्र के उत्तरी जोन 2 के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आगमन शुरू हो गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ के 2 विभागों की IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस बैंक में रखी सरकारी निधियों के दुरुपयोग व हेराफेरी के मामले के संबंध में चंडीगढ़, पंचकुला और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छापेमारी की और पलवल में फिट इंडिया फिट हरियाणा अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों का रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन सुनने वाली सभी बहनों को आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, ये महीना खास हो जाता है क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियां होती हैं और पूरा परिवार साथ में होता है। पूरा परिवार साथ होना यानी तीन पीढ़ियों का संकलन होना। बुजुर्गों के साथ बिताया हुआ समय हमें बहुत कुछ सिखाता है और उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो काम है वो है बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए कहना। हालांकि आजकल की पीढ़ी क्योंकि रात को देर तक सोती है इसलिए सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती, लेकिन घर के बुजुर्ग उन्हें मना ही लेते हैं जल्दी उठने के लिए क्योंकि वो जानते हैं।

सुबह जल्दी उठना कितना लाभदायक है। उठकर सिर्फ बैठना नहीं, उठकर योग करना। बहनों, इस साल की योग दिवस की जो थीम है वो भी इसी बात पर आधारित है। सन 2026 में जब योगा दिवस 21 जून को मनाया जाएगा तो उससे पहले की तैयारियों में देश का हर एक व्यक्ति शामिल है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है हमारे देश की बुजुर्ग पीढ़ी का यानी वृद्धावस्था का। और इन्हीं को प्लान करके इस साल की थीम रखी गई है वृद्धावस्था के लिए योग। विशेष तौर पर वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जिन लोगों को योगा का महत्व पता है, वो लोग जो योगा से अपने जीवन को साधे हुए हैं, वो लोग जिन्होंने साधना की है। क्योंकि योग का अर्थ ही संस्कृत में अगर इस शब्द को बारीकी से देखें तो इसका अर्थ है जोड़ना, मिलना। युज शब्द से ये शब्द बना है। योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और अभ्यासों का एक प्राचीन समुच्चय है। यानी हम सब अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, इन सब को संतुलित कैसे बनाएं और व्यक्तिगत चेतना का आविष्कार कैसे करें, उसको लागू कैसे रखें। और जब योग की बारी आती है, जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो जोड़ते हैं अपने आप को अपने आप से। यानी आत्म साक्षात्कार का सबसे जो वास्तविक स्वरूप है वो है योगा। जब आप आंख बंद करके अपने भीतर उतरते हो, अपने भीतर की गलियों में सैर करते हो, तब पता चलता है कि हम में कितनी खामियां और कितनी खूबियां हैं, कहां कहां हम अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत है, किन किन बातों के लिए हम अपने आप को सही मान सकते हैं कि हम यहाँ पर सही चले, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी भी हमें और अभी सुधार करने की जरूरत है। बहनों, वृद्धावस्था एक ऐसी उम्र है जब ऊर्जा का भंडार तो होता है लेकिन शरीर कम साथ देता है। हालांकि एक पूरा अनुभव की पोटली बांधे हम रहते हैं, लेकिन उसके साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाना, और शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है पहले अपने मानस को यानी अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना। उसी मजबूती के साथ फिर हम अपने शरीर के साथ जितना चाहें उतना काम ले सकते हैं, क्योंकि योग हमें यही सिखाता है कि किस तरह से मन को और मस्तिष्क को जोड़ना है, किस तरह से इन दोनों का मिलन करके अपने 24 घंटों को 25 घंटे बनाना है, और किस तरह से इस पूरे दिन का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से करना है। अगर इतना एक रिटायर व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो काम से बिल्कुल अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो चुका है, उसे अब कोई विशेष ऐसा जिम्मेवारी उसके ऊपर नहीं है, लेकिन वो समाज सुधार की तरफ चल पड़ा है और उसे लगता है कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से वो औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनता है। और इसी वजह से अब की बार की जो थीम रखी गई है वो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये जो थीम है ये उन सभी बढ़ती उम्र के लोगों के साथ लागू होती है जो एक सक्रिय, स्वस्थ और खुशहाल जीवन को बढ़ावा देने में योग के महत्व को जानते हैं। ऐसी जगहें जहां पर आप पूरी शांति के साथ और समाधान के साथ अपना जीवन जीते हैं, जहां आप जिंदगी को एक सवाल नहीं मानते बल्कि जिंदगी के सभी सवालों का जवाब खुद दे सकते हैं और ढूंढते हैं उन बातों को, उन वजहों को जिनकी वजह से आपको जीना है लेकिन दूसरे पर बोझ नहीं बनना है। आप खुद दूसरों के लिए एग्जाम्पल जब बन जाते हो तब ये योग की जो यात्रा है तब ये शुरू होती है। और इस योग की यात्रा में आप चाहें तो कितनी ही बड़ी से बड़ी ऊंचाई को भी छू सकते हैं, चाहे वो ऊंचाई आसमानों की हो, चाहे वो ऊंचाई पहाड़ों की हो, चाहे वो ऊंचाई आपके सपनों की हो, और चाहे आपने अपने लिए जो भी एक ऊंचाई, जो महत्वाकांक्षा तैयार कर रखी है, जो सपना तैयार कर रखा है, उस सपने को छूने की हो। क्योंकि जहां जुनून है वहाँ योग है, और जहाँ योग है वहाँ जुनून है, और जुनून और योग से ही आप सफलता हासिल कर सकते हो। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

धनो, हम बात कर रहे थे वृद्धावस्था में योग की। तो ये क्यों आवश्यक है? सबसे पहले ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वृद्धावस्था में जब हम रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं, उम्र का ये पड़ाव होता है जब आपको अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके अगली पीढ़ी के लोग वो कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और उससे अगली पीढ़ी का जो आपका परिवार है वो अपना करियर बनाने के लिए बाहर निकल जाता है। तो उस समय पर आप अगर उनके सहयोगी बनते हो, उनके साथी बनते हो, तो आप पूरे परिवार के लिए एक सहारा बनते हो। इस समय पर अगर आपने पहले कभी योग नहीं किया है, भागा दौड़ी की जिंदगी रही है, कभी इस बात को ध्यान से नहीं लिया है, तो अब भी आप हल्का फुल्का व्यायाम करके अपने आप को उस सीढ़ी का पहला स्टेप आप ले सकते हो। जैसे कि हल्का सा कार्डियो करके मांसपेशियों की मजबूती और संतुलन सुधारने वाले जो व्यायाम है वो मिला जुला रूप होता है, एरोबिक व्यायाम होता है। हफ्ते में अगर आपने 150

मिनट माने रोजाना लगभग 30 मिनट यानी हफ्ते में 5 दिन तक अगर छोटी मोटी कसरत आपने की है जिससे आपकी सांस थोड़ी सी तेज हो लेकिन आप आराम से बोल पा रहे हो, तो ये एक पैरामीटर है कि सांस तो चढ़ रही है लेकिन आपका बोल जो है उसमें कोई लड़खड़ाहट नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रूप से ये जो योगा है व्यायाम है ये कर सकते हो। शुरुआत करने के लिए सबसे जो जरूरी 4 चीजें हैं जिनको जिनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हो वो है, सबसे पहले तो सैर यानी वॉकिंग माने हल्का सा कार्डियो, घर के आसपास पार्क में थोड़ा सा, अगर आपके घर की छत बड़ी है और सीढ़ियां चढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है यानी घुटने आपके बिल्कुल सही सलामत हैं तो आप ऊपर जाकर भी अपनी छत पर नहीं तो पार्क में जाकर आप लगभग 30 मिनट तक समय देखकर हल्का हल्का सा टहले चहलकदमी करें। अगर लगता है आपको कि अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो तो थोड़ी सी अपनी जो गति है उसको बढ़ा भी सकते हो। आपका खुद का शरीर आपको ये बात बता देगा कि आप कितना और आपको चलना चाहिए और कब आपको आराम करने की ज़रूरत है। बीच बीच में आराम ज़रूर कीजिएगा और साथ में कभी भी किसी के और के साथ कंपटीशन नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपका शरीर आपके हिसाब से चलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको जो लचीलेपन वाला यानी स्ट्रेचिंग वाले जो व्यायाम है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये होता है कि आपका शरीर जाम हो जाता है, जिस भी बॉडी पार्ट के साथ हम ज्यादा काम नहीं लेते हैं वो जड़ होने लगता है, तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला व्यायाम हम करें ताकि आपका शरीर का जो लचीलापन है वो कायम रहे। थोड़ी सी और हल्की ताकत के लिए, स्ट्रेंथ अपने ट्रेनिंग के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हल्के से वजन के साथ आप कसरत कर सकते हो। शुरुआत आप पानी की बॉटल के साथ कर सकते हो या एक बड़ी बॉल के साथ कर सकते हो, उसको लेकर भी अगर आप अपनी पूरी बॉडी को उसके साथ खेलते हो तो आपकी पूरी बॉडी में हरकत होती है, यानी चलने से शुरू करके धीरे धीरे धीरे धीरे आप अपनी पूरी बॉडी को हरकत में ला सकते हो। और उसके बाद सबसे आरामदायक जो योगा है वो है चेयर योगा, जिसमें आपको खड़े होकर कसरत करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो और सांस से संबंधित जितने भी प्राणायाम हैं वो कर सकते हो। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि कोई भी नई कसरत अगर आप शुरू कर रहे हो तो बहुत धीमे धीमे से स्टेप्स के साथ और थोड़े समय के साथ कीजिए, क्योंकि हाईएस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अपने शरीर को चलायमान रखेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। कसरत के दौरान अगर बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या किसी आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, स्पेशली जोड़ों का दर्द है या बीपी या दिल की बीमारी है, तो अपनी क्षमता से ऊपर बिल्कुल ना हो। कहीं भी थोड़े से सिम्टम्स अगर आपको नजर आने लग जाएं कि दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है या उल्टी सी आने को हो रही है, तो वहीं की वहीं रुक जाएं और अपनी बॉडी को रेस्ट दें। बहनों, बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप को चलायमान रखना, क्योंकि दुनिया चलते को सलाम करती है, उगते सूरज को सभी देखकर खुश होते हैं और अपनी दिनचर्या उगते सूरज के हिसाब से बनाते हैं। बहनों, अच्छे योग के लिए, अच्छी कसरत के लिए फिर एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है जो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है, वो है अच्छा खाना खाना, क्योंकि पूरे शरीर को अगर आप कसरत से ऊर्जावान बना रहे हो तो उस शरीर का पोषण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और इस शरीर के पोषण के लिए आप अपने आहार में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और कैल्शियम से भरपूर दूध दही शामिल कर सकते हैं। तला हुआ भुना हुआ या ज्यादा मीठा या नमक वाला इस उम्र में आप बिल्कुल उससे परहेज करें, उसे ना खाएं तो बढ़िया है। वृद्धावस्था में अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए कुछ ऐसी बातें जिनको आप लगातार अपने प्रयोग में लाएंगे वो है कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए आपको कम फैट वाला मतलब बिना मलाई वाला दूध पिएंगे आप, और उसी दूध की दही पनीर और बनाकर उसका सेवन करेंगे। मौसमी फलों की डाइट में उनको अपने डाइट में जरूर लाएंगे और धूप में जितना, अभी तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो अभी ये संभव नहीं है, लेकिन मौसम के हिसाब से आपको हल्की सी धूप लेनी बहुत जरूरी है। फाइबर से युक्त आहार आप जरूर लेंगे,
पाचन क्रिया को ठीक रखते हैं। कब्ज से बचने के लिए दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस और मौसमी हरी सब्जियां खाएंगे तो आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और पहले से ज्यादा एनर्जी वाला पाएंगे। अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए समय समय पर पानी पीना बहुत जरूरी है और इस मौसम में विशेषतः पानी में अगर आप नींबू पानी, सूप या नारियल पानी शामिल कर रहे हैं तो वो और भी ज्यादा एनर्जी देने वाले ड्रिंक्स होंगे। बहनों, ये जो चीज़ें हैं ये आपको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं खानी हैं, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बहुत तेज़ मीठी जो मिठाइयाँ हैं चीनी की, और जितने भी बाहर के पैक्ड फूड्स हैं उनसे अपने आप को बिल्कुल बचाएं पूरी तरह से। पूरे दिन में दो या तीन बार जो आप खाना खाते हैं वो खाना, उसके अलावा हल्के फुल्का जो भोजन है वो आप अपना लीजिए, चाय की आदत है तो चाय भी लीजिए, और थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ कुछ लेते रहें ताकि आपकी जो बॉडी की ऊर्जा है वो लगातार मेंटेन रहे, बनी रहे। अब इस ऊर्जा का विस्तार, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें हम कर रहे हैं, योग बहुत पुराना हमारा विकल्प है, बहुत पुराने जमाने से लोग योग करते आ रहे हैं और योग से अपने शरीर को और अपने मन को और मस्तिष्क को साधते आ रहे हैं, तो ये चीजें हम अपनी नई पीढ़ी में कैसे डालें। तो सबसे जरूरी बन जाता है कि हम बच्चों को भी अपने साथ जोड़े, बच्चों के साथ एक पूरी टोली बनाएं, अपना बचपना दोबारा जिए और उन बच्चों के साथ, चाहे आप किसी भी बहाने से कि मुझे घुमाने ले चलो ये कहकर भी आप बच्चों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों की आदत में अगर ये चीज शामिल हो जाती है तो यकीन मानिए आप एक बहुत अच्छी आदत अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसके लिए वो हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहनों, जिस भी उम्र में जिस भी समय पर आपने योग शुरू कर दिया वो बढ़िया है, लेकिन बुजुर्गों के लिए व्यायाम करने का सबसे जो सही समय होता है सुबह वाला जो समय, जो नाश्ते के बाद का होता है। इस समय मौसम सही होता है, बहुत ज्यादा तेज गर्मी नहीं होती और पूरे दिन के लिए आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं, ऊर्जा ला सकते हैं। हल्की हल्की अपनी सुविधा के अनुसार और अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप दिन का कोई भी हिस्सा ऐसा चुने जब आपको खाना खाए हुए लगभग 2 घंटे हो गए हों। 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपकी मांसपेशियां जो हैं वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी होती हैं, तो उस समय अगर आप सुबह की सैर करने के लिए निकल जाते हो तो ये आपके शरीर के लिए सबसे बढ़िया वाला जो एक्सरसाइज है वो होती है। दोपहर के समय बचे किसी भी तरह का योगा करने से, लेकिन शाम के समय फिर से आप योगा कर सकते हैं और अपने शरीर को जकड़न से बचा सकते हैं। जितने भी ऐसे बुजुर्ग पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दोपहर या शाम के समय योगा कर सकते हैं, हल्का फुल्का योगा अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से। और जितने भी व्यायाम ये कर रहे हैं वो रोग को नियंत्रण करने के लिए, रोग की रोकथाम करने के लिए किए जा रहे हैं, तो ध्यान रहे कि अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई बुजुर्ग है तो वो किसी भी तरह के ऐसे कसरत या व्यायाम से बचे जो उनको आगे जाकर नुकसान हो सकता है, जैसे कि कोई भी तेज काम करने वाला, तेज कदमों से चलने वाला या कोई ऐसा मुड़ने तुड़ने वाली ऐसी कोई एक्सरसाइज है जिससे उनकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बहनों, योगा हर उम्र के लिए जरूरी है और उस उम्र में, जिस उम्र में हम वहां होते हैं जहां हम दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, तो वहां पर और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। महिलाएं विशेषतः योगा करें, क्यों करें? क्योंकि उनका शरीर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए उन्हें अपने शरीर और पूरी जो अपनी उम्र है वो घर के काम कर रही हैं या बाहर की जिम्मेवारियां ले रही हैं, दोहरी जिम्मेवारियां निभा रही हैं, तो उस समय तो उन्हें और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने शरीर का ध्यान रखना। और बहनों, बुजुर्गों के लिए विशेष बात यह है कि जब तक जिए अपने मन से, अपनी मर्जी से जिए, जहां चाहे वहां घूमने जाएं, जब चाहे तब वो अपना काम कर सके, जैसा चाहे वो अपनी जीवन शैली बना सके, किसी भी तरह से वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे, इन सभी बातों के लिए उन्हें योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र का ये पड़ाव
आपके लिए एक ऐसा पड़ाव है जहां आप अनुभव का भंडार लिए बैठे हैं, जहां आप कितने चाहें उतने प्रयोग कर सकते हैं। हमारी पूरी

जिंदगी प्रयोगशाला बन सकती है अगर हम अपने आप को सक्रिय रखें, अपने विवेक अपना कायम रखें और अपने आप को हम शारीरिक और मानसिक रूप से अगर हम संतुलित रखना चाहते हैं तो। अध्यात्म के मोड पे भी हम योगा कर सकते हैं, जैसे सत्संग में ताली बजाना एक योग का ही प्रकार है। अगर कोई भी हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको संगीत में रुचि है और अगर वो नृत्य करने में इंटरेस्ट रखते हैं और उनका शरीर उन्हें परमिशन देता है कि वो डांस कर सके, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा अगर वो अपने आप को उस तरीके से ढाल ले कि सत्संग करें, कीर्तन करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं, अपनी वाणी में अपने मन वचन कर्मों से अपने आप को शुद्ध रखें, सात्विक आहार लें और लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। खुद तो वो एक संतुलित जीवन जी ही रहे हैं, उनको देखकर दूसरे भी सीख रहे हैं ये चीज कि कैसे हम इन जैसा बन पाएं। अगर एक सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके मुख को आप देखेंगे तो उसके मुख का जो प्रकाश है, जो ऑरा है, वो दूसरों को प्रेरित करता है और उस ये योग से संभव है। जब आप नियंत्रण में हो, जब आपकी इच्छाएं नियंत्रित हैं, जब आप जानते हो कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, किसके साथ कैसा रहना है, एक मुस्कुराता हुआ ऊर्जावान चेहरा हमेशा हर उम्र के और हर युग के व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे बुजुर्गों का एक टीम बनाएं, एक टोली बनाएं, जो कि आपस में तो योग कर ही रहे हैं, वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो उम्र है, ये जो दौड़ चल रहा है, ये भागा दौड़ी का, आपाधापी का दौड़ चल रहा है। इस समय अगर पार्क में बैठे हुए किसी तनावग्रसित व्यक्ति को हमने हंसना सिखा दिया, अगर हमने मुस्कुराना सिखा दिया और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हमें जो आत्मसंतोष मिला, तो उसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि हंसना अपने आप में एक योग है। कहते हैं हंसने से जो शरीर की, चेहरे की मांसपेशियां जो योग के अंडर में आती हैं, जो खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है, वो रोने से ज्यादा होती है। तो जिस चीज में हमें योग ऑटोमेटिकली हो रहा है, कुदरती हो रहा है, क्यों ना उस प्रक्रिया को अपनाया जाए, क्यों ना हंसा जाए और हंसाया जाए, क्यों ना मुस्कुराया जाए। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहनों, हंसने हंसाने की इस प्रक्रिया में अगर हम अष्टांग योग यानी ऋषि पतंजलि ने जो योग के व्यवस्थित रूप में इनको चार आठ चरणों में जो बांटा और बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन आठ तरह के योग को अपनाकर अपने आप को संपूर्ण कर लेते हैं तो हम भी योगी हो जाएंगे, हम भी साधक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि अभी से आप अपने आप को, अपने शरीर को योग के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, कोई भी समय किसी भी काम को करने के लिए लेट नहीं होता, जब चाहे हम उस अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और अब घड़ी हमें और इजाज़त नहीं दे रही है कि हम आपके साथ रहें, लेकिन हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का, और इन प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम घर आंगन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा radiohisar@gmail.com। और
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मारी पसंद।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: मारी पसंद कार्यक्रम सुन लिए सारे बन भैया ने। आजाद भाई की राम राम। मारी पसंद कार्यक्रम में आपके लिए किस्से कहानी गीत रागनी लेके आ कर रहे। किस्से की बात रागनी एक किस्से की, जिसमें आप अपनी पसंद की रागनी गीत संगीत सुनाया कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में आपके लिए कार्यक्रम एक कलाकार थे। आज के हमारे कलाकार रहेंगे हरियाणा के जाने माने लोक गायक बाली शर्मा, जिन्होंने अपनी रागनी और बानगी के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से सहेजा है। प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं।
1: ये खोल।

और बड़ी बड़ी क्या करें तम हो सो कई कसम की रखी सियत ना करो दो।

लक्ष्मी चंडी सांग की राई, लक्ष्मी चंडी सांग की राई, के सब ने पाया करे से अपना जल बहलावण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी पसंद, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम, जिसका रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: the government. Now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
2: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो

0: आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
1: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
2: शायद कागज खो भी जाते हैं, मिलते नहीं,
1: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है, और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
2: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
1: बिल्कुल,
2: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
1: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है, लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ हो

0: है, उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है,
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते, कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है, ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहां पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक

0: हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने यह तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे। और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक है उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है।

0: है, तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है।
1: जी,
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में, आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत, अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम 3रे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। एनसीडीज का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक

0: सेवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटरनल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है, और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम करें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर

0: कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
1: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट यू वर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अनुप्रिया पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम, जिसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था, FM 102.3 MHz पर, आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम मारी पसंद।
1: बात उस टाइम की रहेगी जब वो द्रौपदी सुदेशना के पास दासी के रूप में रहने लाग गई। उधर कौन के कीचक अपनी बहन सुदेशना से पूछे है, आए वे बेया कौन। सुदेशना कहने लगी, भाई या तो मेरी दासी है। कीचक कहने लगा, ए बेबे तू इसने मेरे महल में भेज, मैं इसने रानी बना के रखूंगा। सुदेशना कहने लगी, भाई बोला ना बने, जो तू सोचे है या इसी औरत को ना। और जे तू मेरा और खुद का भला चाव है तो बोल बाला लेकर जा। वासुदेशना कीचक को क्या समझाती है उस मौके की बात।
2: भला

ना समझते या पूरी नेम परने की अपने कहे हुए बचनाते या हर गिज नहीं फेरने की और खेत

ते न्यारा इसका दासी मतना समझे इसमें राजपाट धन सारा इसका कजन कजे लिया देख जनता रे दुनिया

que boca और अच्छी भुंडी ये कह बीजी के मर जागी रो रो के दखना मन्ना चे साजा अपनी इज्जत ने भी खो के इसके पास पति बलवान इसे

0: जो दादरिया बुरी बात दा हैल चुगर पे एकदम परचे फेरी जा
1: देखे मूरख मानसी सतपुरुषों का रे जीना मुश्किल करी जा
0: सतपुरुषों की टहल क

मदनपुर के राजा मदन सेन कंचनपुर के राजा नारायण सिंह की कवारी बेटी चंदकिन के फोटो को देख के अपनी अकल खराब कर ले है। राजा मदन सेन एक बुढ़िया थे, चंदकिन के महल के बारे में पूछे हुआ बुढ़िया बोली, भाई जड़े में आलना गेरू न्यू समझ लिए, आड़े चंदकिन का महल है। वह बुढ़िया आलना गेर के आगे सीने निकल जाए। राजा मदन सेन चंदकिन के फोटो की खटक में चंदकिन के महल तड़े साधु के देश में दूना लाले है। मदन सेन की रानी नागदे राजा मदन सेन को खूब समझावे है, पर वो नहीं मान्या। चंदकिन के महल को देख के राजा मदन सेन क्या कहता है

सहेगे मार दा।

0: तो ये तो सुना भाइयों, आज आपने कार्यक्रम एक कलाकार की रागनी। आज के हमारे कलाकार थे बाली शर्मा और साथी। हमारा एक प्रयास है किस्से की बात हर रागनी के साथ, रागनी एक किस्से की। किस्से का मजमून बता दिया जाता कि रागनी ठीक समझ में आ जा। लोक संगीत हमारा बड़ा धनाढ्य रहा। हम सब का ये प्रयास होना चाहिए कि अपने गीत संगीत को बचा के रखें, सहेज के रखें, आने वाली पीढ़ी को इस बात ने जरूर समझावें कि हमारा गीत संगीत यू हुआ करता। पहले पक्के साजों की गीत रागनी हम सुना करते, फिर गड़वा बैंजो आया। चलो प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना भी चाहिए, लेकिन परिवर्तन मन माफिक हो, परिवर्तन वो हो जो अपनी पुरानी चीजों को भी सहेज के रखे। हम सबका ये प्रयास, हमारी संस्कृति का हो विकास। आपने हमारे कार्यक्रम किसे एक लाग रहे हैं, इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाएं जरूर लिख दिया करें इस पते पे, कार्यक्रम मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी SR पिन 125001। इसी के साथ आज का हमारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करके अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति, सारे बहन भाइया ने राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मारी पसंद FM 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने।

साथियों, जीवन में मधुर वाणी और अच्छे विचार का कोई विकल्प नहीं होता। ये जहां भी होते हैं वहां खुशियां खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती हैं। कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप दोस्तों के प्यार भरे संदेश, शुभकामनाएं और आपकी फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके फरमाइशी गीतों का ये सुरीला सफर, ये सुरीली महफिल आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ। लेकिन उससे पहले आप नोट कर लें हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9792-53-272, 9792-53-272। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी फरमाइशें, अपने संदेश भेज सकते हैं। तो करते हैं आपके व्हाट्सएप संदेश पढ़ने का सिलसिला शुरू। इस मैसेज के साथ हमें सबसे पहले मैसेज मिला है, हमारे श्रोता रहेंगे ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, और इनके साथ और भी श्रोता हैं प्रायण, शिवम, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। ये हमें संदेश मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। गांव मसूदपुर, जिला हांसी, हरियाणा से सुभाष जांगड़ा, राजेश, पंकज जांगड़ा और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और इनके पूरे परिवार के सदस्यगण हमें व्हाट्सएप संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। और इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा, राशि, माधुरी, किरण, अनुराग, मोहन, ये हमें मैसेज कर रहे हैं जिला किशनगंज बिहार से। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, परिणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने का मैसेज हमें मिला है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोता रहेंगे गांव हिपरसोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सीमर शेख और करिश्मा शेख। गांव व डाकघर मिन्नाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है कस्बा अग्रवाल, मंडी टटीरी, बागपत, यूपी।

ही हमें ये मैसेज मिला है जिन्होंने हमें मैसेज किया है, नाम इस प्रकार से है इनके, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कोसर का मैसेज हमें मिला है। मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला का मैसेज हमें मिला है। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का हमें संदेश मिला है। और आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर आराधना फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में।

साथियों, जन्म के समय मनुष्य का मन भी एक खाली कोरे कागज के समान होता है। समय के साथ साथ उस पर उसके विचार, अनुभव, कर्म और संगति उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मन में सदैव अच्छे विचार, प्रेम, दया और सत्य और अच्छे संस्कारों को स्थान देना चाहिए, ताकि जीवन की कहानी सुंदर और प्रेरणादायक बन सके। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। हमें मैसेज मिला है गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके पूरे परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार ने मैसेज किया है। और गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और अदीब ने हमें मैसेज भेजा है। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का मैसेज हमें मिला है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सोपान तायड़े, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर का मैसेज हमें मिला है। गांव चूली देशवाली जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडु का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमारे साथ एक नए श्रोता ने हमें मैसेज किया है। हमारे साथ ये जुड़े हैं गांव भोडा फतेहाबाद से हरपति, शिव, पदम, पलक और कुमकुम ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें ये संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मुंडीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी और उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी का मैसेज हमें मिला है। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान और उत्तम जमधाड़े हमें मैसेज कर रहे हैं। और देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया, ये हमें डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से मैसेज हमें कर रहे हैं। चौधरीवास से हमारे श्रोता हैं राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने मैसेज किया है। और ये मैसेज हमें मिला है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें लुधियाना पंजाब से अक्षित और परीक्षा

ने मैसेज किया है। ये हमारे श्रोता रहेंगे कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवने, कृष्णा, अविका, विशाखा, सायशा सोनवने, और श्री रामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका और सानू कुंभार ने मैसेज किया है। वार्ड नंबर 1 पोफाले जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो रास्ते का ये गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्षब के बहाने फिल्मी तराने आकाशवाणी एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज के हिसार केंद्र पर और अपने साथी अनिल भल्ला के साथ। हमें मैसेज मिला है गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा कहना, लड्डू, ममता और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, चंद्रकला, देवीदास और हरी भाऊ बिड़वे ने हमें मैसेज किया है। और गांव घमंडिया, जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढुकिया और इवा धारणिया ने हमें मैसेज किया है। सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने हमें मैसेज किया है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दोबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय का मैसेज हमें मिला है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख का मैसेज हमें मिला है। और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने मैसेज हमें किया है। और जिला मुरादाबाद गुराम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का मैसेज हमें मिला है। और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी रिया और जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन और एकनाथ जाधव का मैसेज हमें मिला है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने हमें मैसेज किया है। और मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित, रेशमा गोदारा, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, सुनीता ढिल्लो, सीमा शर्मा, हरिपाल कौर, मीनाक्षी तिवारी, बिपाशा शर्मा, सोनिया, कालका, किरण ठाकुर और जग्गी दुआ, प्रेम लता और सब इनके मित्रगण और परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति पुरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कमल का मैसेज हमें मिला है। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से हमें रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें गांव ठुईया जिला फतेहाबाद हरियाणा से गगन सोड, दीपक, राकेश और मेना देवी का मैसेज हमें मिला है।

और ये मैसेज हमें मिला है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा का। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में गजब फिल्म का ये गीत। ऐ हवा मेरे साथ साथ चल, दिल के हर जज्बात के साथ चल, राह में मिलें जो खुशियों के फूल, उनकी मीठी सौगात के साथ चल। हवा से कह दो थोड़ा ठहर जाए, कोई प्यारी सी धुन बिखर जाए, महफिल ये सुरूर सजी है आज, हर दिल का मौसम निखर जाए।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत रहेगा राजा और रंक, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद है आप सभी की। भूड चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति और वंशराज सिंह।

साथियों, चलते चलते हमें कुछ श्रोताओं के मैसेज मिले हैं। वो हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली से। इसी के साथ ही हमें मैसेज करने वाले हमारे श्रोता हैं जौहरी वाडा पैठन से, चांद मामू, फुरकान शेख, जकिया गुफरान और खुशी मोरवे का मैसेज हमें मिला है। और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, जसवी यादव ने हमें मैसेज किया है। और ये हमारे श्रोता हैं गांव जाखोद राजस्थान से, शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का मैसेज हमें मिला है। और कुलाम रोड, हरगोबिंद नगर, नवांशहर, पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा संधू और मैक्स ने हमें मैसेज किया है। और हमारे श्रोता हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, इन्होंने हमें मैसेज किया है। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें जरूर भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 992││53││272││）। अब दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने, फिल्मी तराने। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2

0: कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शायद टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और

0: आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें डालकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों

0: के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेक को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपी सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 011-233-1048। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं बोध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

रोशनी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: जो थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, मैं लिखता मध्यम शार्प नोट कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम का। तो जैसे जैसे

0: वो चढ़ता जाएगा ठीक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शर्मिंदा होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ, ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अभी है हमको तो जरा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन।

खरीदने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने।

सुनीता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर यह पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहां परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब

जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आई और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब के बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 केन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थी। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

पांच में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006 एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इविल हियर नो इविल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर।

0: चले चले ख्वाबों की राही।
1: अभिनीत राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृत राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आई। 2009 में हरमन बवेजा के साथ वो नजर आई फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।

0: पर मिल जाएंगे।
1: साल 2011 में राक्षी प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

जिसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में

अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में, फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट जिसमें थे सनी देओल, साल 2013 प्रकाश झा की, फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुत करता

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र मुंबई से किया जा रहा था। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर मैं अनिल भल्ला एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में। साथियों, ये कार्यक्रम होगा आपके ईमेल संदेश पर आधारित और हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले ईमेल संदेश के साथ। हमें सबसे पहले संदेश मिला है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ का, और हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। ये हमारे

रहेंगे संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश मिला है। हमारे श्रोता हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, विराज सिंह और शुभदीप सिंह। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव चुल्ले देशवाली जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडु ने ईमेल के जरिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये संदेश भेजा है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पुरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल ने हमें संदेश भेजा है। और मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, बसंतराज भोजने, पीएस नहावकर और तुषार करांगले का हमें संदेश मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सरद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख ने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर साधना सरगम और जतिन ललित की युगल आवाजों में फिल्म जो जीता वही सिकंदर का ये गीत।

अगले गीत के लिए जो हमें ईमेल संदेश प्राप्त हुए हैं, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें संदेश मिला है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक व आदित्य कसाना, लदावली, जिला मुरादाबाद से। और ये हमारे श्रोता हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल और सोपान तायड़े, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। गांव हिपरसोगा, तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और कृष्णा शेख ने हमें संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले श्रोता है शेरवानी स्कूल गंजू डवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी और लुबना अंसारी, लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें ईमेल कर रहे हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का हमें मैसेज मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी ने हमें संदेश भेजा है। गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफार खत्री का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद, कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म साजन का ये गीत।

साथियों, दिल की जिद भी बड़ी अजीब होती है। जिसे पाना मुश्किल हो उसी के करीब होती है। लाख समझाया इस दिल को मगर समझ ना पाया। हर धड़कन में बस तेरा ही नाम समाया। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी के साथ ही हमें अगली ईमेल भेजी है। हमारे श्रोता रहेंगे चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का संदेश हमें मिला है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महेत्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, इन्होंने हमें बीड शहर महाराष्ट्र से ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे श्रोता रहेंगे गांव हीरामाली, फजिलका, पंजाब से, सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं लुधियाना पंजाब से, अक्षित और परीक्षित। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, माधो वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा का हमें संदेश मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर नुसरत फतेह अली खान की आवाज में धड़कन फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, हमें फरमाइश भेजी है हमारे श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें संदेश भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल ने। हमारे अगले श्रोता रहेंगे संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट, इन्होंने संदेश भेजा है निवासा खुपटी महाराष्ट्र से। और हमारे अगले श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ, फारजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और समस्त इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं गांव कल्याण मलका, जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर का मैसेज हमें मिला है। और दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से हमारे श्रोता रहेंगे महमूद मोहम्मद, यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें संदेश भेजा है बठिंडा रोड मंडी डब वाले से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग ने। ये संदेश हमें मिला है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का संदेश हमें मिला है। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बाघमारे और शशांक बाघमारे का संदेश हमें मिला है। ये हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और हमारे ये श्रोता रहेंगे जिन्होंने संदेश भेजा है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज में।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता हैं गांव जाखोज से, जिन्होंने हमें ईमेल्स भेजा है। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक, और गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र शमशेर, मनोज और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश मिला है हमारे

श्रोता रहेंगे। नई बस्ती गंजरू डवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी का संदेश हमें मिला है। और हमारे अगले श्रोता हैं अंकित कुमार सिंह, नंदन कुमार सिंह, जिला बेगूसराय बिहार से, और संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार, और इसी के साथ ही हमें संदेश भेजने वाले हमारे ये श्रोता रहेंगे दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश मिला है। हमारे श्रोता हैं धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत का मैसेज हमें मिला है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। आइए सुनते हैं इन साथियों की पसंद पर दिलवाले फिल्म का ये गीत कुमार सानू और नदीम श्रवण की युगल आवाजों में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

साथियों, हमें ईमेल संदेश आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल से डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश मिला है। हमारे श्रोता हैं एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा का संदेश हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव कुम्हार हेड़ा से। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे अगले श्रोता हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अब्बासी अनम और यशफ अब्बासी, और सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे श्रोता रहेंगे ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने संदेश किया है। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, और इसी के साथ ही हमें संदेश भेजने वाले श्रोता हैं पटियाली रोड गंजू डवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, अकील कुरैशी, बेबी अरीबा और हबीबा का संदेश हमें मिला है। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का संदेश हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है हमारे श्रोता रहेंगे।

सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने हमें संदेश भेजा है। और पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने हमें ईमेल के जरिए संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है, हमारे श्रोता हैं शर्मा कॉलोनी जींद से मीनू मीनू, अक्षिता रक्षित, आरव और अंकित का संदेश मिला है। और कुलदीप, असीन, सुमित, अक्षित, अंश, अंशिका, सौरभ, यश और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण नहला, फतेहाबाद, हरियाणा से हमें ईमेल के जरिए संदेश भेज रहे हैं। गांव जोगीवाला, श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण ने हमें संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है, हमारे श्रोता हैं गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, ऋतु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार। और गांव चौधरी वास से ही हमारे श्रोता रहेंगे राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी, रेखा और चरण दास का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश आया है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का।

सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ ने संदेश भेजा है। और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का संदेश हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में गदर फिल्म का ये गीत।

साथियों, चलते चलते हमें कुछ ईमेल प्राप्त हुए हैं। अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, अंकिता, सुमू और तानिया हुड्डा, गांव फरांसे हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश हमें मिला है। और हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें संदेश भेजा है, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा और हनुमान सहरण का संदेश हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें संदेश भेजा है चेक 5MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com। अब दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: सर के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।